0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर फ्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोदोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद करता सुई इंटरनेट पैकेज नया जोड़ान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: तपाईं यति बेला सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम ट्रिपिङ टाइम यदि तपाईँ पनि आफूलाई मन परेको गीत सुन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 5584 नम्बर डायल गरेर आफूलाई मन परेको गीत सुन्न सक्नुहुन्छ

0: प्रोडक्ट हरू कोकोनट सोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइड क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्की
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो स्लाइस कोटो को डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

राम राम सन्जे 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिक राम चौधरी हार्दिक स्वागत बा। दाङको दंगीशरण गाउँपालिका से आफ्नो गाउँपालिका भित्रको कृषि समूह तथा कृषि फर्ममा आबद्ध किसान हुनका 50% अनुदानमा आधुनिक कृषि यन्त्रीकरण सामग्री वितरण गरिराखल। आज आयोजित कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरीले किसान हुनका विभिन्न कृषि यन्त्र तथा उपकरण हस्तान्तरण गरिराखल। गाउँपालिका से हरेक वर्ष किसान हुन आधुनिक खेती प्रणाली आकर्षित गर्न उद्देश्य से कृषि यन्त्रीकरण सामग्री वितरण कर्ती ऐलक जना राखल। आर्थिक वर्ष 2083-84 को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि शाखा से 6 लाख रूपया ओ हेफर परियोजना से 10 लाख रूपया कैकन 16 लाख रूपया विनियोजन करगिल रह। किसान हुकनक तर्फ से थप 16 लाख रूपया लागत सहभागिता जुटागिल खर्से कुल 32 लाख रूपया को कार्यक्रम संचालन करगिल हो। टेण्डर प्रक्रिया मार्फत खरीद करगिल सामग्री मध्य 26,22,214 रूपया बराबर के कृषि उपकरण वितरण करगिल गांवपालिका जना रखल। वितरण करगिल सामग्री में 20 ठो मिनी टेलर 5 ठो रिपर 11 ठो चापक टर 11 ठो 2 इंच मोटर दुबिना पम्प तथा 7 ठो 3 इंच पानी बाहर निकर्ना मोटर रहलबाट कार्यक्रम हन सम्बोधन करती गाउँपालिका अध्यक्ष गिरीसी किसान ओकनक बाहुल्यता रलक दंगीशरणमा आधुनिक खेती प्रणाली हन प्रोत्साहन कर असिन कार्यक्रम हन निरन्तरता दिगिलक पटुवा रखल। वहां से वितरण करगिलक सामग्री का सही सदुपयोग कर किसान हुकनकला आग्रह समेत गईरखल। गांवपालिका को कृषि शाखा प्रमुख सरू भूषाल के अनुसार सार्वजनिक सूचना जारी कईकन आवेदन माग करगिल पाछ प्रक्रिया पूरा करलक कृषि समूह तथा कृषि फर्म छनौट कईकन सामग्री वितरण करगिल हो। वहां से गत वर्ष छनौटमा पर निषेकलक समूह तथा फर्म हुकनकला यी वर्ष प्राथमिकतामा धरगिलक जानकारी दिइराखल। लुम्बिनी प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 5 जनक मन्त्री से पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरिराखल। प्रदेश प्रमुख कृष्ण बहादुर घरती मगर से आज नवनियुक्त मन्त्री हुनकला पद तथा गोपनीयताको शपथ गराइलक भेट। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको सिफारिशमा नेपालको संविधानको धारा 168 उपधारा 9 बमोजिम मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिगिल बा। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा पुनर्गठित मन्त्री परिषदमा एमाले से 4 जना ओ जनता समाजवादी पार्टी से 1 जना कैकन 5 जना लौ मन्त्री गत बिहीबार नियुक्त हुइल रह। लौ नियुक्त मन्त्री हुकनकमा तुलसी प्रसाद चौधरी हन, कृषि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय डिलीराज भूषाल हन, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय रामजी प्रसाद घिमिरे हन, स्वास्थ्य मन्त्रालय रत्नबहादुर खत्री हन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भण्डारी लाल अहिर हन, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको जिम्मेवारी देगिल्बा। शपथ ग्रहण पश्चात मन्त्री हुकनकले आजुजु आफ्नो मन्त्रालयमा पुग्न पदभार ग्रहण गरिराखल। कोराई उपमहानगरपालिका 13 डुमर गाउँमा महिला लोपोन्मुख नौमती बाजा संरक्षणसँग आमदानी कर तयार राख्ल। युनिक नौमती बाजा संरक्षण संस्था दर्ता कैकन दमाहा झ्याली ट्याम्को ढोलक सहनाई कर्णाल नरसिंह बाजा बजेती मौलिक संस्कृति जोगिना अभियानमा जुटलक महिलाको नक्से बाजा बजाकन आमदानी समेत कर्ती आइलबाट। युनिक नौमती बाजा संरक्षण संस्थाकी अध्यक्ष दिल कुमारी घरती मगर से नौमती बाजा बजाकन परम्परागत कला संस्कृतिका संरक्षणसँग आर्थिक रूपमा आमदानी समेत हुइतिरलक बटुवा राख्ले। अध्यक्ष घरती मगरका अनुसार गाउँघरसँग घोराईका विभिन्न क्षेत्रमा महिला मेला महोत्सव धार्मिक कार्यक्रम विवाह व्रतबन्ध लगायतका कार्यक्रम शुभ कार्यमा संस्था मार्फत विगत 4 वर्ष से नौमती तथा पञ्चे बाजा बजेती अहिलबाटी। उहाँ से बाजा बजाकन बहार न्याङ्गाबेर सुरुमा डान्से लाज लग्ल सेफे अखि लाज लग्ना अप्ठ्यारो होइन जस्तो समस्या निहुलक बतुवा राख्ले। पुहाज ओ अन्य शुभ कार्यमा बाजा बजाइकलाग दाङका विभिन्न ठाउँसँग रोल्पा उपठानसम्म जैना करलबाट मेला महोत्सव पुहाज लगायतका कार्यक्रममा बाजा बजाइबेर जाइबेर 20 से 25 हजार रूपियाँ लेना कर्ल सेफे सामाजिक कार्यसँग सम्बन्धित धार्मिक कार्यक्रम से भरी तोकलक पैसा निलेना करलक वहां का कहे बाटिन।
ओ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका भित्रका बाल बालिकामा क्षयरोगको देखगिल्बा उपमहानगरपालिका अनुसार 355 जना विरम्या मध्ये 15 वर्ष सिटीका बाल बालिका 34 जना ओ 15 वर्ष से उपरका 321 जनामा क्षयरोग देखगिल्बा। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाका क्षयरोग स्रोत व्यक्ति शिवप्रसाद तिवारीका अनुसार सरकारी तथा कुछ निजी स्वास्थ्य संस्था मार्फत संचालित 13 डट्स केन्द्रले क्षयरोगको निशुल्क निदान उपचार तथा व्यवस्थापन सेवा प्रदान हुति रहल्बा। तिवारीका अनुसार बालिका भित्र रोग निको निहुना दर 97% रहल्बा कलस्य क्षयरोगका कारण 3% मृत्यु हुना करल्बा। नेपाल सरकारले सन् 2035 देशना क्षयरोग मुक्त बनिना राष्ट्रिय लक्ष्य लिएर राखल। जनस्वास्थ्य प्रवर्धन शाखाका प्रमुख ओमपी निपानेसे तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासे आगामी 3 वर्षभित्र पालिका हान क्षयरोग मुक्त घोषणा गर्न कैकन निदान उपचार तथा व्यवस्थापनका काम हन निरन्तरता देलक बटुवा रखल। उहाँसे क्षयरोग नियन्त्रणमा आही कुछ गम्भीर चुनौती बाँकी रहलक औल्या रखल। हुइठा ताजु थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर अत्रह काल सन्ध्या फे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखस खबर मसे समाचार कक्ष कसकु संगरियनसँग मैशालिक राम चौधरी विदाहीटु रिरी मध्यपश्चिम ओनिटी रवि राम राम।

0: 3 महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट जो 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया चरण को लागि गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागि 1 महीना फ्री इंटरनेट वायनेट अब सबै कनेक्टेड।
1: मोटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारे सूचना।
2: शहीद गंगालाल राष्ट्रीय हृदय रोग केन्द्र बाँसबारी काठमाडौँमा कार्यरत एमबीबीएस एमडी कार्डियोलोजिस्ट मोटु रोग विशेषज्ञ डाक्टर आनन्द खनाल अब सड़क विभाग अगाडिको दिव्य फार्मेसीमा आउँदै हुनुहुन्छ। मोटु रोगका बिरामीले विशेषज्ञ सेवाले आफ्नो रोगको पूर्ण निदान गर्नुहोस्।
1: डाक्टरद्वारा दिइने सेवाहरू:
2: ब्लड प्रेसर हाई लो भएका,
1: कोलेस्ट्रोल बढी भएको,
2: मुटुको गति एकनास नभएको,
1: मुटु डुक हुने, डर लागे जस्तो महसुस हुने,
2: मुटुको बाथ रोग, मुटु सुन्निएको।

0: 94.4 मेगाहर्ज मा तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो मध्यपश्चिम।
1: ओखती साबुन को अर्को प्रस्तुति बहुगुणी ओखती आयुर्वेदिक तेल लामो अनुसंधान पछि आविष्कार भएको रुगा खोकी नाकबन्द जिउ दुखेको आदि सबैका लागि एकमात्र अचूक तेल जडीबुटी को शक्ति ओखती आयुर्वेदिक तेल मात्र रु 50 मा।
2: गुराही को लागि आधिकारिक विक्रेता भुसाल स्टोर हस्पिटल रोड गुराही दान फोन नम्बर 082-585-210। थप सम्पर्कका लागि हिमालय स्टोर बाल मन्दिर अगाडि निरज स्टोर सब्जी मंडी नजिक र प्रवेश श्रृंगार दूरसंचार देखि पश्चिम तर्फ।
3: सम्पूर्ण विशेषज्ञ सेवाहरू अब एउटै छाना मुनि।
4: वरिष्ठ हार्ट जोन तथा नशा रोग विशेषज्ञ डाक्टर अनिल यादव बुद्ध इन्टरनेशनल हस्पिटल प्रणाली घोराहीमा।
5: डाक्टर अनिल यादवद्वारा दिइने सेवाहरू
4: हात खुट्टा भाँचिएको, हात खुट्टा झमझमाउने, ढाड कम्मर दुख्ने, हार्ट जोनिक सम्बन्धी अपरेशन सेवा,
6: अन्य विशेषज्ञ सेवाहरू, वरिष्ठ फिजिसियन डाक्टर अभ्यास पोखेलद्वारा बिरामी चेक जाँच सेवा,
7: वरिष्ठ सर्जन डाक्टर रमेश बस्नेतद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: नसा तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सुबोध कुमार शर्माद्वारा बिरामी चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
6: वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर विमला तिवारीद्वारा चेक जाँच तथा अपरेशन सेवा,
8: वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर विज्ञान केसीद्वारा बिरामीको चेक जाँच तथा उपचार सेवा,
9: वरिष्ठ रेडियोलोजिस्ट डाक्टर अनिश आचार्यद्वारा भिडियो एक्सरे सेवा,
6: साथै इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, सिस्टोस्कोपी, इको, कल्पोस्कोपी, सिटीजी लगायतका अत्याधुनिक प्रविधिका सेवाहरू।
3: सम्पर्क बुद्ध इन्टरनेसनल हस्पिटल प्राली, सडक विभाग ओह्रालो, घोराई जाँच, फोन नम्बर 082-585-218।

0: बाय नेट को बाय वन गिफ्ट वन फ्री ऑफर में तीन महीना को 125 एमबीपीएस इंटरनेट और 2700 में खरीद गर्दा सुई इंटरनेट पैकेज नया जरान को लागी गिफ्ट करने मौका सफल रेफरल में आपको लागी एक महीना फ्री इंटरनेट बाय नेट अब सब कनेक्टेड
1: मध्य पश्चिम चैक ये बेला रात्रि को 9 बजे को

6.9 को शानदार डिस्प्ले AI पावर्ड कैमरा दुई वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

शब्द सुरेन्द्र सुनचौरी, संगीत राजकुमार बगर, स्वर शिव परियार, सीआरबीटी 01-600-25780, सीआरबीटी 600-533।